0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो का पुरोहितों को दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा लियो 14 महीने पवित्र हृदय के महोत्सव पुरोहितों के विश्व पवित्रीकरण दिवस के अवसर पर पुरोहितों के नाम 12 जून को एक संदेश प्रेषित किया। संत पापा ने पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ पर अपने संदेश को व्यवस्थित करते हुए कहा, यह दिव्य बुलाहट सदियों से गूंजती आ रही है। यह आज भी हर विश्वासियों के लिए ठोस रूप से ध्वनित होती है और विशेष रूप से हम पुरोहित भाइयों के लिए। यह बहुत से विकल्पों में से एक नहीं है और ना ही कोई अमूर्त आदर्श ही, क्योंकि यह हर व्यक्ति के जीवन की पहचान में समाहित है जो पुनर्जीवित के जीवन में अपने को साझा करने की चाह रखते हैं। ईश्वर हमें स्वयं अपनी पवित्रता में शामिल होने को निमंत्रण देते हैं। जब वे हमें अपनी तरह पवित्र होने के लिए बुलाते हैं, वे हमें उस मार्ग को दिखलाते हैं जो हमें उनके हृदय की शैली का अनुसरण करने को निमंत्रण देता है। ईश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। जिस पवित्रता की वे हमसे मांग करते हैं एक विश्वासपूर्ण समर्पण है, जहां हम अपने को पवित्र आत्मा से परिवर्तित होने देते हैं। हम सभी ईश्वर की पवित्रता को अपने में वहन करने हेतु बुलाए जाते हैं, लेकिन हम इस निधि को मिट्टी के पात्र में वहन करते हैं। हम अपने में अपूर्ण और सीमित हैं, बहुधा कमजोर और चिंतित तथा वहीं कई बार घायल। कैसे एक संवेदनशील हृदय इस बड़ी बुलाहट का प्रत्युत्तर दे सकता है? पुरोहित इस तनाव में जीता है, फिर भी वह अपने में इस बात को पहचाने कि वह यीशु की खुली बगल में अपने लिए शांति को प्राप्त करता है। संत पापा ने कहा, यीशु के संग हमारे हृदय की एकता एक वह अनुभूति नहीं है जो कुछ एक चुने गए लोगों के लिए सुरक्षित रखी जाती हो, बल्कि यह एक संस्कार है, यूखरिस्तीय यात्रा जो हमारे रोज दिन के जीवन में सामने आती है। प्रिय भाइयों, संत पापा लियो ने कहा, अपने अभिषेक के द्वारा हम यीशु के समानुरूप बन जाते हैं, फिर भी हमें चाहिए कि हम अपने को प्रतिदिन की प्रार्थना, ख्रिस्त्याग, उनके वचनों पर चिंतन और अपने भाई बहनों की नम्रता में सेवा करते हुए उनकी कृपा से अपने को नवीन करें। आइए हम सारी चीजों में ख्रिस्त से अपने को संयुक्त करें। वे चीजें जिन्हें हम करते हैं और वे जो हमारे रोज दिन के जीवन में होती हैं, तब वह पवित्रता जिसे हमने अलग अलग कोशिशों से बेकार में खोजा है, कृपा के प्रत्युत्तर में पोषित और हमारे लिए परिवर्तन में अभिव्यक्त होगी। वास्तव में हमारी मानवता अलग अलग हिस्सों में बंटी नहीं है। प्रार्थना, प्रेरिताई, हमारे संबंध, चिंताएं, खुशियां और असफलताएं, यहाँ तक कि हमारा समय या प्रेम जो हमें व्यर्थ प्रतीत होता है, हमारे लिए वे विशेष स्थल बनते हैं जहाँ ईश्वर हमें अपने को और अपने अनंत प्रेम को व्यक्त करते हैं। संत पापा ने कहा, एक पुरोहित जो ईमानदार, सीधा साधा और शुद्ध हृदय वाला है, अपने में कार्य के माध्यम, प्रार्थना में करुणावान, संकट के समयों में और स्वयं अपने लिए आनंद का उपहार होता है। विश्व को उन पुरोहितों की जरूरत है जो अपने को वचनों या कार्यक्रमों से अधिक देते हैं। यह एक जीवित मेल मिलाप हृदय की मांग करती है जो ख्रीस्त के पवित्रता की मीठी खुशबू को बिखेरती है। एक पुरोहित का जीवन जो यीशु ख्रीस्त के हृदय के समानुरूप और स्थिर होता है अपने में एकता, शांति और करुणा की विश्वसनीय निशानी है। इस भांति युद्ध और विभाजन के ऐसे समय में हमें शांति और भले चरवाहे की कोमलता के साक्षी होने की मांग की जाती है जो इस बात को जानते हैं कि बिखरे हुओं को कैसे समेटना और घायलों की चंगाई कैसे करना है। हमारी उत्साह बेचैनी भरी नहीं है बल्कि यह प्रेम की अपार खुशी अर्थात परम आनंद से प्रवाहित होती है जिसमें हम खुलापन

अपहुंच दूरी या तटस्थ पूर्णता नहीं है, बल्कि एक प्रेम जो अपने को घायल होने तक देता है, जिसके कारण वह हमारे लिए करुणा और जीवन का एक स्रोत बनता है। यीशु का पवित्र हृदय हमारे लिए ईश्वर के अथाह प्रेम की अनुकरणीय निशानी है। यह एक शक्तिशाली प्रेम है, क्योंकि इसमें विशेषकर संवेदनशीलता और इसमें हमारी उदासी को कृपा और दुखों को आशा में बदलने की योग्यता है। संत पापा ने कहा कि इस भांति पवित्र हृदय वह स्थल है जहां पवित्रता को हम निकटता और कोमलता के रूप में अभिव्यक्त पाते हैं। पुरोहित की पवित्रता अतः नम्रता और साहसिक निकटता में सन्निहित है, जो सारे लोगों के लिए सारी चीजें बन जाता और भेड़शाला के द्वार को खुला रखता है, जिससे बहुत से लोग प्रवेश कर उसमें अपने लिए चारागाह और विश्राम प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि हम ईश्वर में उस संबंध के लिए बुलाए गए हैं जो हमें दूसरों से दूर नहीं करता है, बल्कि हमें हर एक के निकट लाता, जहां हम धैर्य और नम्र हृदय, निकटता के योग्य, करुणावान और सुनने के योग्य बनते हैं। हम नहीं जीते, बल्कि यीशु हम सबों में जीते हैं। ऐसी पवित्रता तटस्थता में नहीं जिया जा सकता है। संत पापा ने कहा कि आप पुरोहिताई के अपने भ्रातृत्व का लुफ्त उठाएं, एक दूसरे की खोज करें, एक दूसरे को सुने और सहयोग करें। पुरोहित जो अपने को अलग करता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पुरोहित जो अपने भाइयों के संग चलता वह विकास करता है। संत अगुस्टिन इसकी याद दिलाते हुए हमें कहते हैं, हम अपने को अंधेरे में पाने से कैसे दूर करें? अपने भाइयों को प्रेम करने के द्वारा। हमारे भाइयों को प्रेम करने का प्रमाण क्या है कि हम एकता को नहीं तोड़ते और प्रेम के कार्यों का अभ्यास करते हैं। संत पापा ने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ कि भावना को यीशु ख्रिस्त के वेधित हृदय के सामने आप रोज दिन नवीन करें। अपने को उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित करें, जिससे आप उनके लोगों को उसी भांति प्रेम कर सकेंगे जैसे उन्होंने किया। और अर्श के संत की बातों को याद दिलाते हुए संत पापा ने कहा, पुरोहिताई यीशु ख्रिस्त के हृदय का प्रेम है। यह एक प्रतिज्ञा और गारंटी है कि यदि हम अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं, हमारा कुछ नहीं खोएगा। संत पापा ने कहा, मैं आप सबों को, हर एक को कुमारी मरियम को समर्पित करता हूँ, जो पुरोहितों की माता है। वह जिन्होंने अपने पुत्र के हृदय के रहस्य को अपने में वहन किया, हमें भी ख्रिस्त के हृदय को, जो दुनिया के मुक्ति दाता है, जो हम में धड़कता है, अपने में सजीव बनाए रखने में मदद करें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। परमतम पीठ ने आपसा फ्रतेलो सोले फाउंडेशन एवं अचिया के साथ एक एग्रीवोल्टेक प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के जरिए वैटिकन सिटी स्टेट की ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति करना है। वैटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट, परमतम पीठ के विरासत के प्रशासन, आपसा फ्रतेलो सोले फाउंडेशन और अचिया, जो इटली की जानी मानी ऊर्जा एवं जल उपयोगिताओं में से एक है, ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता का मकसद रोम के निकट संत मरिया दी गैलेरिया के अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्र में एक एग्रीवोल्टेक प्लांट के विकास को आगे बढ़ाना है। 10 जून को हस्ताक्षरित इस समझौते में परियोजना की प्लानिंग एवं उसे लागू करने में सहयोग के लिए एक ढांचा बनाया गया है, जिसे वैटिकन गवर्नरेट, आपसा एवं फ्रतेलो सोले फाउंडेशन के जरिए विकसित करना चाहता है। यह पहल पोप लियो 14वें द्वारा 1 जून को जारी एक दस्तावेज के जरिए फ्रतेलो सोले फाउंडेशन की स्थापना के बाद की गई है। फाउंडेशन को इस परियोजना की देखरेख का काम सौंपा गया है, जिसका मकसद न केवल रोम के पास संत मरिया दी गैलेरिया में मौजूद वैटिकन रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर के लिए बिजली देना है, बल्कि वैटिकन सिटी स्टेट की ऊर्जा आवश्यकताओं में भी योगदान देना है। एग्रीवोल्टेक प्लांट पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक विश्व पत्र लाउदातो सी, प्रेरितिक प्रबोधन लाउदातो देयम और मोतु प्रोप्रियो फ्रतेलो सोले में बताए गए पर्यावरण के सिद्धांतों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को कृषि कार्यों के साथ जोड़ेगा। परियोजना की तकनीकी मुश्किलों को देखते हुए अचिया ऊर्जा, पर्यावरण, पानी और कृषि विभाग में विशेषज्ञों को देकर इस पहल का समर्थन करेगा। परियोजना के लिए कानूनी ढांचा इटली एवं वैटिकन सिटी के बीच संत मरिया दी गैलेरिया में एक एग्रीवोल्टेक प्लांट के बारे में हुए समझौते के द्वारा बनाया गया था, जिस पर 31 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किया गया था और इटली ने अप्रैल 2026 में इसे मंजूरी दी थी। पोप लियो 14वें विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक का निमंत्रण स्वीकार करते हुए सोमवार 22 जून को विश्व खाद्य कार्यक्रम के रोम स्थित मुख्यालय जाएंगे, ताकि निदेशकों के वार्षिक सत्र में हिस्सा लेने वालों के साथ साथ कर्मचारियों एवं उनके परिवारों से मिल सकें। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। यह दुनिया का एक बड़ा मानवीय संगठन है, जो आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाने के साथ साथ भुखमरी मिटाने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में करीब 318 मिलियन लोग भुखमरी के शिकार हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम उनमें से करीब 124 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन प्रदान कर रहा है। 10वें ऑस्ट्रियन विश्व शिखर सम्मेलन के लिए प्रेषित एक वीडियो संदेश में पोप लियो 14वें ने विश्वास, आशा एवं प्रेम को एक ऐसी विषय वस्तु के रूप में बताया है, जो जलवायु संकट पर चिंतन करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक, नैतिक और आर्थिक मामलों को भी छूते हैं। पोप लियो 14वें ने 16 जून को जारी एक वीडियो संदेश में कहा, जलवायु संकट से असरदार तरीके से निपटने के लिए हमें अपने समाज की बुनियाद में मौजूद सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, जैसे सभी मनुष्यों की समान इज्जत एवं मानवाधिकारों की अहमियत। पोप लियो ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा पर हाल ही में प्रकाशित अपने प्रेरितिक विषय पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का जिक्र करते हुए कहा, पर्यावरण संकट कोई अकेला मुद्दा नहीं है, बल्कि आज के सामाजिक आर्थिक संकट का पारिस्थितिक पहलू है। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे विश्वास, उम्मीद एवं प्यार तीन ऐसे विषय हैं जो पर्यावरण संकट से निपटने के तरीके पर सोचने में मदद कर सकते हैं। पोप का वीडियो संदेश 10वें ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट को दिया गया, जो वियना में होने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका मकसद जलवायु संकट से अलग समाधान और विचार विमर्श के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है। यह 16 जून को हो रहा है और इसे श्वार्ज़नेगर जलवायु पहल आयोजित कर रहा है, जिससे अभिनेता और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने लॉन्च किया था। पोप लियो ने याद किया कि कैसे उन्होंने मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में सभी इंसानों की समान गरिमा और बुनियादी मानवाधिकारों के महत्व पर जोर दिया है। पोप ने कहा,
ये जरूरी निजी और सामाजिक मामले जलवायु संकट से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो जैसा कि मैंने कहा बड़े सामाजिक आर्थिक संकट का एक रूप है और एक अहम रूप है। असल में जब तक इन पर ध्यान दिया जाता, पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी भी तकनीकी समाधान को अपना मनचाहा मकसद हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बारे में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाधान निकालते एवं हल ढूंढते समय सबसे गरीब एवं पर्यावरण के नुकसान के सबसे ज्यादा खतरे में रहने वाले लोगों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पोपलियो ने बतलाया कि ये बहुआयामी दृष्टिकोण जो हमारे समाज पर असर डालने वाले अलग अलग मुद्दों के आपस में जुड़े होने को मानता है, विश्वास के दृष्टिकोण से जुड़ा है। उन्होंने समझाया, जो लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है और यह अपने आप में अच्छी है, उन्हें सृष्टि की देखभाल करने की और बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि यह उनके विश्वास की जरूरत है। उन्होंने पोप फ्रांसिस के 2015 के प्रेरित विश्व पत्र लौदातो सी का जिक्र करते हुए कहा, ईश्वर की सृष्टि की रक्षा करने की अपनी बुलाहट को जीना सदाचारी जीवन जीने के लिए जरूरी है। पोप लियो ने यह भी बताया कि कैसे कई अलग अलग धर्म सृष्टि को एक ईश्वरीय उपहार मानते हैं और जीवन की पवित्रता पर जोर देते हैं। इस तरह धार्मिक विश्वास जीवन की रक्षा करने और प्रकृति की देखभाल करने की पूरी इच्छा को मजबूत करती है। अंत में पोप ने प्यार विषय वस्तु एवं हमारे पर्यावरण की देखभाल की एक सच्ची संस्कृति के लिए महत्व पर जोर दिया, जिसमें पोप फ्रांसिस द्वारा कहे गए नागरिक और राजनीतिक प्यार शामिल है। पोप ने लौदातो सी का फिर से जिक्र करते हुए कहा, समाज को ज्यादा मानवीय मानव के ज्यादा लायक बनाने के लिए सामाजिक जीवन में प्यार को नई अहमियत देनी होगी। पोप ने यह उम्मीद जताते हुए अपनी बात समाप्त की कि सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोग देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देंगे और प्यार की सभ्यता में सहयोग करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो का पुरोहितों को दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा लियो चौदहवें ने पवित्र हृदय के महोत्सव पुरोहितों के विश्व पवित्रीकरण दिवस के अवसर पर पुरोहितों के नाम 12 जून को एक संदेश प्रेषित किया। संत पापा ने पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ पर अपने संदेश को व्यवस्थित करते हुए कहा, यह दिव्य बुलाहट सदियों से गूंजती आ रही है। यह आज भी हर विश्वासियों के लिए ठोस रूप से ध्वनित होती है और विशेष रूप से हम पुरोहित भाइयों के लिए। यह बहुत से विकल्पों में से एक नहीं है और ना ही कोई अमूर्त आदर्श ही, क्योंकि यह हर व्यक्ति के जीवन की पहचान में समाहित है जो पुनर्जीवित के जीवन में अपने को साझा करने की चाह रखते हैं। ईश्वर हमें स्वयं अपनी पवित्रता में शामिल होने को निमंत्रण देते हैं। जब वे हमें अपनी तरह पवित्र होने के लिए बुलाते हैं, वे हमें उस मार्ग को दिखलाते हैं जो हमें उनके हृदय की शैली का अनुसरण करने को निमंत्रण देता है। ईश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे प्रदान करूँगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। जिस पवित्रता की वे हमसे मांग करते हैं, एक विश्वासपूर्ण समर्पण है जहां हम अपने को पवित्र आत्मा से परिवर्तित होने देते हैं। हम सभी ईश्वर की पवित्रता को अपने में वहन करने हेतु बुलाए जाते हैं, लेकिन हम इस निधि को मिट्टी के पात्र में वहन करते हैं। हम अपने में अपूर्ण और सीमित हैं, बहुधा कमजोर और चिंतित तथा वहीं कई बार घायल। कैसे एक संवेदनशील हृदय इस बड़ी बुलाहट का प्रत्युत्तर दे सकता है? पुरोहित इस तनाव में जीता है, फिर भी वह अपने में इस बात को पहचाने कि वह यीशु की खुली बगल में अपने लिए शांति को प्राप्त करता है। संत पापा ने कहा, यीशु के संग हमारे हृदय की एकता एक वह अनुभूति नहीं है जो कुछ एक चुने गए लोगों के लिए सुरक्षित रखी जाती हो, बल्कि यह एक संस्कार है, यूखरिस्तीय यात्रा जो हमारे रोज दिन के जीवन में सामने आती है। प्रिय भाइयों, संत पापा लियो ने कहा, अपने अभिषेक के द्वारा हम यीशु के समानुरूप बन जाते हैं, फिर भी हमें चाहिए कि हम अपने को प्रतिदिन की प्रार्थना, ख्रिस्तियाग, उनके वचनों पर चिंतन और अपने भाई बहनों की नम्रता में सेवा करते हुए उनकी कृपा से अपने को नवीन करें। आइए हम सारी चीजों में ख्रिस्त से अपने को संयुक्त करें। वे चीजें जिन्हें हम करते हैं और वे जो हमारे रोज दिन के जीवन में होती हैं, तब वह पवित्रता जिसे हमने अलग अलग कोशिशों से बेकार में खोजा है, कृपा के प्रत्युत्तर में पोषित और हमारे लिए परिवर्तन में अभिव्यक्त होगी। वास्तव में हमारी मानवता अलग अलग हिस्सों में बंटी नहीं है। प्रार्थना, प्रेरिताई, हमारे संबंध, चिंताएं, खुशियां और असफलताएं, यहाँ तक कि हमारा समय या प्रेम जो हमें व्यर्थ प्रतीत होता है, हमारे लिए वे विशेष स्थल बनते हैं जहाँ ईश्वर हमें अपने को और अपने अनंत प्रेम को व्यक्त करते हैं। संत पापा ने कहा, एक पुरोहित जो ईमानदार, सीधा साधा और शुद्ध हृदय वाला है, अपने में कार्य के माध्यम प्रार्थना में करुणावान, संकट के समयों में और स्वयं अपने लिए आनंद का उपहार होता है। विश्व को उन पुरोहितों की जरूरत है जो अपने को वचनों या कार्यक्रमों से अधिक देते हैं। यह एक जीवित मेल मिलाप हृदय की मांग करती है जो ख्रीस्त के पवित्रता की मीठी खुशबू को बिखेरती है। एक पुरोहित का जीवन जो यीशु ख्रीस्त के हृदय के समानुरूप और स्थिर होता है अपने में एकता, शांति और करुणा की विश्वसनीय निशानी है। इस भांति युद्ध और विभाजन के ऐसे समय में हमें शांति और भले चरवाहे की कोमलता के साक्षी होने की मांग की जाती है जो इस बात को जानते हैं कि बिखरे हुओं को कैसे समेटना और घायलों की चंगाई कैसे करना है। हमारी उत्साह बेचैनी भरी नहीं है बल्कि यह प्रेम की अपार खुशी अर्थात परमानंद से प्रवाहित होती है जिसमें हम खुलापन, उपहार और मिलन को पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि पवित्रता का प्रत्युत्तर हमारे लिए बहुत अधिक तपस्या या सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति में निहित नहीं है। यद्यपि वे हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन यह हमारे लिए विश्वास में ख्रीस्त के प्रेम से संयुक्त रहना है जो बेधित हृदय के द्वारा प्रकट किया गया है। प्रेरित संत योहन हमें क्रूसित यीशु के बेधित बगल पर चिंतन करने का निमंत्रण देते हैं जिसमें ईश्वर हमें निश्चित रूप में यह दिखलाते हैं कि पवित्रता क्या है। यह अपहुंच दूरी या तटस्थ पूर्णता नहीं है बल्कि एक प्रेम जो अपने को घायल होने तक देता है जिसके कारण वह हमारे लिए करुणा और जीवन का एक स्रोत बनता है। यीशु का पवित्र हृदय हमारे लिए ईश्वर के अथाह प्रेम की अनुकरणीय निशानी है। यह एक शक्तिशाली प्रेम है क्योंकि इसमें विशेषकर संवेदनशीलता और इसमें हमारी उदासी को कृपा और दुखों को आशा में बदलने की योग्यता है। संत पापा ने कहा कि इस भांति पवित्र हृदय वह स्थल है जहां पवित्रता को हम निकटता और कोमलता के रूप में अभिव्यक्त पाते हैं। पुरोहित की पवित्रता अतः नम्रता और साहसिक निकटता में सन्निहित है जो सारे लोगों के लिए सारी चीजें बन जाता और भेड़शाला के द्वार को खुला रखता है जिससे बहुत से लोग प्रवेश कर उसमें अपने लिए चारागाह और विश्राम प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि हम ईश्वर में उस संबंध के लिए बुलाए गए हैं जो हमें दूसरों से दूर नहीं करता है बल्कि हमें हर एक के निकट लाता जहां हम धैर्य और नम्र हृदय निकटता के योग्य, करुणावान और सुनने के योग्य बनते हैं। हम नहीं जीते बल्कि यीशु हम सबों में जीते हैं। ऐसी पवित्रता तटस्थता में नहीं जिया जा सकता है। संत पापा ने कहा कि आप पुरोहिताई के अपने भ्रातृत्व का लुफ्त उठाएं, एक दूसरे की खोज करें, एक दूसरे को सुने और सहयोग करें। पुरोहित जो अपने को अलग करता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पुरोहित जो अपने भाइयों के संग चलता वह विकास करता है। संत अगुस्टिन इसकी याद दिलाते हुए हमें कहते हैं, हम अपने को अंधेरे में पाने से कैसे दूर करें? अपने भाइयों को प्रेम करने के द्वारा। हमारे भाइयों को प्रेम करने का प्रमाण क्या है कि हम एकता को नहीं तोड़ते और प्रेम के कार्यों का अभ्यास करते हैं। संत पापा ने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ कि भावना को यीशु ख्रीस्त के बेधित हृदय के सामने आप रोज दिन नवीन करें। अपने को उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित करें जिससे आप उनके लोगों को उसी भांति प्रेम कर सकेंगे जैसे उन्होंने किया। और अर्श के संत की बातों को याद दिलाते हुए संत पापा ने कहा, पुरोहिताई यीशु ख्रीस्त के हृदय का प्रेम है। यह एक प्रतिज्ञा और गारंटी है कि यदि हम अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं हमारा कुछ नहीं खोएगा। संत पापा ने कहा, मैं आप सबों को हर एक को कुमारी मरियम को समर्पित करता हूँ जो पुरोहितों की माता है। वह जिन्होंने अपने पुत्र के हृदय के रहस्य को अपने में वहन किया हमें भी ख्रीस्त के हृदय को जो दुनिया के मुक्ति दाता है जो हम में धड़कता है अपने में सजीव बनाए रखने में मदद करें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। परमतम पीठ ने आपसा फ्रतिलो सोले फाउंडेशन एवं अचिया के साथ एक एग्रीवोल्टेक प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के जरिए वैटिकन सिटी स्टेट की ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति करना है। वैटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट परमतम पीठ के विरासत के प्रशासन आपसा फ्रतिलो सोले फाउंडेशन और अचिया, जो इटली की जानी मानी ऊर्जा एवं जल उपयोगिताओं में से एक है, ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता का मकसद रोम के निकट संत मरिया दी गैलेरिया के अतिरिक्त क्षेत्र में एक एग्रीवोल्टेक प्लांट के विकास को आगे बढ़ाना है। 10 जून को हस्ताक्षरित इस समझौते में परियोजना की प्लानिंग एवं उसे लागू करने में सहयोग के लिए एक ढांचा बनाया गया है, जिसे वैटिकन गवर्नरेट आपसा एवं फ्रतिलो सोले फाउंडेशन के जरिए विकसित करना चाहता है। यह पहल पोप लियो 14वें द्वारा 1 जून को जारी एक दस्तावेज के जरिए फ्रतिलो सोले फाउंडेशन की स्थापना के बाद की गई है। फाउंडेशन को इस परियोजना की देखरेख का काम सौंपा गया है, जिसका मकसद न केवल रोम के पास संत मरिया दी गैलेरिया में मौजूद वैटिकन रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर के लिए बिजली देना है, बल्कि वैटिकन सिटी स्टेट की ऊर्जा आवश्यकताओं में भी योगदान देना है। एग्रीवोल्टिक प्लांट पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक विश्व पत्र लाउदातो सी, प्रेरितिक प्रबोधन लाउदातो देयम और मोतु प्रोप्रियो फ्रतिलो सोले में बताए गए पर्यावरण के सिद्धांतों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को कृषि कार्यों के साथ जोड़ेगा। परियोजना की तकनीकी मुश्किलों को देखते हुए अचिया ऊर्जा, पर्यावरण, पानी और कृषि विभाग में विशेषज्ञों को देकर इस पहल का समर्थन करेगा। परियोजना के लिए कानूनी ढांचा इटली एवं वैटिकन सिटी के बीच संत मरिया दी गैलेरिया में एक एग्रीवोल्टेक प्लांट के बारे में हुए समझौते के द्वारा बनाया गया था, जिस पर 31 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किया गया था और इटली ने अप्रैल 2026 में इसे मंजूरी दी थी। पोप लियो 14वें विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक का निमंत्रण स्वीकार करते हुए सोमवार 22 जून को विश्व खाद्य कार्यक्रम के रोम स्थित मुख्यालय जाएंगे, ताकि निदेशकों के वार्षिक सत्र में हिस्सा लेने वालों के साथ साथ कर्मचारियों एवं उनके परिवारों से मिल सकें। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। यह दुनिया का एक बड़ा मानवीय संगठन है, जो आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाने के साथ साथ भुखमरी मिटाने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में करीब 318 मिलियन लोग भुखमरी के शिकार हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम उनमें से करीब 124 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन प्रदान कर रहा है। 10वें ऑस्ट्रियन विश्व शिखर सम्मेलन के लिए प्रेषित एक वीडियो संदेश में पोप लियो 14वें ने विश्वास, आशा एवं प्रेम को एक ऐसी विषय वस्तु के रूप में बताया है, जो जलवायु संकट पर चिंतन करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक, नैतिक और आर्थिक मामलों को भी छूते हैं। पोप लियो 14वें ने 16 जून को जारी एक वीडियो संदेश में कहा, जलवायु संकट से असरदार तरीके से निपटने के लिए हमें अपने समाज की बुनियाद में मौजूद सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, जैसे सभी मनुष्यों की समान इज्जत एवं मानवाधिकारों की अहमियत। पोप लियो ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा पर हाल ही में प्रकाशित अपने प्रेरितिक विषय पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का जिक्र करते हुए कहा, पर्यावरण संकट कोई अकेला मुद्दा नहीं है, बल्कि आज के सामाजिक आर्थिक संकट का पारिस्थितिक पहलू है। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे विश्वास, उम्मीद एवं प्यार तीन ऐसे विषय हैं जो पर्यावरण संकट से निपटने के तरीके पर सोचने में मदद कर सकते हैं। पोप का वीडियो संदेश 10वें ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट को दिया गया, जो वियना में होने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका मकसद जलवायु संकट से अलग समाधान और विचार विमर्श के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है। यह 16 जून को हो रहा है और इसे श्वार्ज़नेगर जलवायु पहल आयोजित कर रहा है, जिससे अभिनेता और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने लॉन्च किया था। पोप लियो ने याद किया कि कैसे उन्होंने मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में सभी इंसानों की समान गरिमा और बुनियादी मानवाधिकारों के महत्व पर जोर दिया है। पोप ने कहा,
ये जरूरी निजी और सामाजिक मामले जलवायु संकट से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो जैसा कि मैंने कहा बड़े सामाजिक आर्थिक संकट का एक रूप है और एक अहम रूप है। असल में जब तक इन पर ध्यान दिया जाता, पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी भी तकनीकी समाधान को अपना मनचाहा मकसद हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बारे में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाधान निकालते एवं हल ढूंढते समय सबसे गरीब एवं पर्यावरण के नुकसान के सबसे ज्यादा खतरे में रहने वाले लोगों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पोपलियो ने बतलाया कि ये बहुआयामी दृष्टिकोण जो हमारे समाज पर असर डालने वाले अलग अलग मुद्दों के आपस में जुड़े होने को मानता है, विश्वास के दृष्टिकोण से जुड़ा है। उन्होंने समझाया, जो लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है और यह अपने आप में अच्छी है, उन्हें सृष्टि की देखभाल करने की और बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि यह उनके विश्वास की जरूरत है। उन्होंने पोप फ्रांसिस के 2015 के प्रेरित विश्व पत्र लौदातो सी का जिक्र करते हुए कहा, ईश्वर की सृष्टि की रक्षा करने की अपनी बुलाहट को जीना सदाचारी जीवन जीने के लिए जरूरी है। पोप लियो ने यह भी बताया कि कैसे कई अलग अलग धर्म सृष्टि को एक ईश्वरीय उपहार मानते हैं और जीवन की पवित्रता पर जोर देते हैं। इस तरह धार्मिक विश्वास जीवन की रक्षा करने और प्रकृति की देखभाल करने की पूरी इच्छा को मजबूत करती है। अंत में पोप ने प्यार विषय वस्तु एवं हमारे पर्यावरण की देखभाल की एक सच्ची संस्कृति के लिए महत्व पर जोर दिया, जिसमें पोप फ्रांसिस द्वारा कहे गए नागरिक और राजनीतिक प्यार शामिल है। पोप ने लौदातो सी का फिर से जिक्र करते हुए कहा, समाज को ज्यादा मानव के ज्यादा लायक बनाने के लिए सामाजिक जीवन में प्यार को नई अहमियत देनी होगी। पोप ने यह उम्मीद जताते हुए अपनी बात समाप्त की कि सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोग देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देंगे और प्यार की सभ्यता में सहयोग करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: अमृत को का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है।
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

तुम्हारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्पेन की प्रेरितिक यात्रा पर संत पापा का संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग अपने स्पेन की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Priye bhaiyo evam behno, suprabhat aur suswagatam. Main aap sabhon ke sang pichle saptah Spain, Madrid, Barcelona, Montserrat aur Canary Dweep ki preritik yatra par अपने चिंतनों को साझा करना चाहूंगा। अफ्रीका के 4 देशों की अपनी लंबी यात्रा के बाद इस समय मैंने एक यूरोपीय देश की एक प्राचीन और ख्रिस्तीय परंपरा की समृद्धि में अपने को सराबोर किया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वर्तमान समय में स्पेन ने जो अपने में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। हर जगह संत पापा का आतिथ्य जोश और सुनने की उत्सुकता से किया। इसके लिए मैं ईश्वर और पूरे स्पानी लोगों, राजा और नागर अधिकारियों, धर्माधिशकों और कलिसियाई समुदायों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट करता हूँ। संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर के लोगों ने मुझे अपने विश्वास और प्रेम की आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा वृहद सांत्वना प्रदान किया। अपनी ओर से मैंने रोम के धर्माध्यक्ष स्वरूप विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए इस बात की सुनिश्चितता प्रदान की कि वे एकता को बढ़ावा देते हुए वार्ता और विभिन्नताओं में एकता के माध्यम से हर तरह के विभाजन और संघर्षों पर विजय प्राप्त करें। यह संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी की एक विशेष सेवा है, एक सेवा जो हर समय उन देशों के कलिसियाई और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने में एक विशेष अभिव्यक्ति को प्रकट करती है। स्पेन के संबंध में संत पापा ने कहा कि मैंने इस बात को देखा कि हर उम्र के कितने ही लोगों ने संत पापा की प्रेरितिक यात्रा का खुशी में इंतजार किया। हर जगह मैंने असंख्य लोगों की भीड़ देखी जिन्होंने बहुत ही गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया। हम इस सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं और यह हमारे लिए विचारणीय है। निसंदेह इस तरह की सहभागिता हमारे लिए सर्वप्रथम स्पानी लोगों के विश्वास को प्रकट करती है, संत पापा ने कहा। उन्होंने कहा कि वही मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह इस तथ्य को प्रकट करती है। मेरा मानना है कि यह एक सच्ची और गहरी नींव पर एकता पाने की बड़ी जरूरत को दिखलाता है, जो ना तो सोच पर आधारित है और ना ही किसी खास फायदे पर ही। यह नींव आखिरकार हमें यीशु ख्रिस्त में प्राप्त होती है, जिसे हम सुसमाचार के जरूरी सांस्कृतिकरण के माध्यम लोगों के जीवन में प्रसारित कर सकते हैं। यह ऐसा कर सकता है क्योंकि इसका संदेश दोनों जरूरतों का प्रत्युत्तर देता है, एक सच्चाई की खोज और दूसरा न्याय की प्यास। मैड्रिड और बार्सिलोना में हमारी भेंट एक बड़े महागिरजाघर के साथ साथ एक आधुनिक स्टेडियम में हुई। हमने मोंसेरात के आबे में रोजरी प्रार्थना की। हमने सग्रादा फामिलिया में ख्रिस्तियाग अर्पित किया, जो एक शानदार निशानी पत्थरों और दीप का मधुर मिलन है, अपने में हर एक को ख्रिस्तीय रहस्य के बारे में कहता है। प्राचीन और आधुनिकता का यह मिलन, संत पापा ने कहा, ख्रिस्तीय परंपरा और समकालीन परंपरा ने मुझे यूरोप के असली रूप, उसकी बेशुमार दौलत को एक जीवित सच्चाई के तौर पर, न कि पुरानी बातों के रूप में देखने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा, यह एक धरोहर है जिसकी हमें सावधानी पूर्वक सुरक्षा करने की जरूरत है, जिससे यह आज के वैश्विक दुनिया में महत्वपूर्ण चुनौतियों, शांति, समग्र पारिस्थितिकी, समानांतर और सतत विकास तथा मानवीय सम्मान के आधार पर उपयोग में लाई जा सके। ये वे सारी चुनौतियां हैं जिन्हें वैटिकन द्वितीय महासभा ने पहले ही स्पष्ट रूप में चिन्हित किया था और जिसके संबंध में कलीसिया के धर्म सिद्धांत ने बाद में जिक्र किया, और वर्तमान में जिसकी चर्चा विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास करता है, जिसका लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा करना है। संत पापा लियो ने कहा कि विभिन्न मिलनों के द्वारा मैंने संत पापा के विचार अनुरूप आज की मानवता में सुसमाचार की आशा को सुनने की जरूरत को पाया, जो विकास के नकारात्मक रूपों द्वारा हो रहे बुरे नतीजों से बुरी तरह परेशान है। यह आवश्यकता जो विभिन्न साक्ष्यों में अभिव्यक्त हुई, जिसे मैंने सुना, कभी कभी प्रभावित करती तो कभी शिक्षा प्रदान करती है। इस जरूरत को मैंने छोटे और गरीबों के चेहरों में भी देखा जिनसे मेरी मुलाकात हुई। पल्ली का वह बालक जिसने अपनी चिट्ठी को मेरे लिए पढ़ा, कुछ दुराचार के शिकार जो अपने को सोने जाने की मांग करते हैं, कैद खाने की वे बंदी जिन्होंने मेरा इंतजार किया, युवा जो अपने को चिंतित और आशाओं से भरा पाते हैं, आतिथ्य केंद्र कनारी द्वीप के प्रवासी गण। संत पापा लियो ने कहा कि कनारी महाद्वीप हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था, जहां मुझे एक व्यापक जानकारी दी गई। मुझे द्वीप समूहों की एक ओर भौगोलिक जानकारी मिली तो दूसरी ओर स्थानीय कलीसिया के द्वारा इस सच्चाई से अवगत कराया गया, जो एक वृहद संख्या में बाध्य प्रवासियों का स्वागत करते हैं, जो मुख्यतः अफ्रीका से आते हैं। हम जानते हैं कि प्रवासन की घटनाएं अपने में जटिल हैं और उसके लिए संगठित और सहयोगिक कार्य परियोजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन यह परिभाषा हमारे लिए एक अलग विस्तृत दृष्टिकोण को खोलती है। यह हमें यह समझने के योग्य बनाती है कि कैसे हम आज की दुनिया में सुसमाचार का पुनः अध्ययन करने को बुलाए जाते हैं, एक दूसरे के संग किस तरह अपनी संस्कृति के उपहार को साझा करते हैं, और उन सारी चीजों में विशेषकर ख्रिस्त के कौन से संदेश फलहित होते हैं। बहुत से फलों में हम इसमें एक विशेष फल लोगों और देशों के बीच में वार्ता को पाते हैं, भ्रातृत्व की भावना में मिलन, जो हमें एक दूसरे के मूल्यों को पहचानने और उनकी प्रशंसा करने में मदद करता है। यह अपने में एक सहज मार्ग नहीं है, यह हमसे सद्भावना और ईश्वर से सहायता की मांग करती है, लेकिन यह हमारे लिए एक मार्ग है जो हमें प्रेम की सभ्यता के मार्ग में अग्रसर करता है। संत पापा लियो ने कहा कि मेरी प्रेरितिक यात्रा के आदर्श वाक्य अलजादा ला मिरादा, अपनी आंखों को उठाएं था। यह यीशु के शब्द हैं जिसे उन्होंने अपने प्रथम शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जिससे वे लोगों और भीड़ में जीवन, सच्चाई और पूर्णता की चाह को देखने के योग्य हो सकें। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन वचनों को मेरे लिए भी कहते हैं और उनकी कृपा से मैंने इस प्रेरितिक यात्रा में उसका अनुभव किया है। आज मैं आप सबों को निमंत्रण देना चाहूंगा कि हम अपनी आंखें उठाएं। हम यीशु से अपने पड़ोसी की ओर, लोगों और दुनिया की ओर देखना सीखें। यीशु की निगाहों से, अर्थात प्रेम, सम्मान और करुणा की भावना से। संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा के अंत में सभों के प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त किए जिन्होंने उनकी प्रेरित यात्रा की सफलता हेतु प्रार्थना की, विशेषकर स्पेन के मठवासी धर्म बहनों के लिए। उन्होंने कहा, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनकी संख्या बहुत है। संत पापा ने कहा कि आप निरंतर प्रार्थना करना जारी रखें जिससे कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा वह बीज अत्यधिक फल उत्पन्न कर सके जिन्हें मैंने बोया है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार को अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो 14वें ने ईरान और अमेरिका से बातचीत और सहयोग के रास्ते पर चलने की अपील की। लगभग 4 महीने की लड़ाई के बाद दोनों देशों के शुक्रवार 19 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। संत पापा ने कहा, मैं इस्लामिक गणतंत्र ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते पर पहुंचने का खुशी के साथ स्वागत करता हूं, जिस पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किया जाएगा। यह सब्र और बातचीत के काम का एक हौसला बढ़ाने का नतीजा है। संत पापा ने उन मध्यस्थ देशों को धन्यवाद दिया जिन्होंने शांति बातचीत को आसान बनाने के लिए काम किया है। स्विस सरकार के मुताबिक यह समझौता बर्गेनस्टॉक के एक होटल में होगी। बर्गेनस्टॉक एक पहाड़ है जहां से लुसर्न झील दिखती है और जहां पहुंचना मुश्किल है। संत पापा ने इस समझौता ज्ञापन पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह समझौता मध्य पूर्व में आपसी भरोसे, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे लोगों के बीच बातचीत और सहयोग के रास्ते बढ़ेंगे। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले किए, जिसमें देश के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया गया। ईरान ने जवाब में इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी बेस और सहयोगियों पर जवाबी हमले किए, जबकि होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में रुकावट डाली। इसके बाद संत पापा लियो ने यूक्रेन में बढ़ती मौतों पर दुख जताया, क्योंकि रूस देश पर, खासकर यूक्रेनी शहरों पर अपने हमले तेज कर रहा है। संत पापा ने कहा, कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं और बचाने वाले भी मारे गए हैं। कलीसिया और सांस्कृतिक विरासत की जगहें आग की लपटों से तबाह हो गई हैं। मैं उन सभी के करीब हूं जो अपने प्रियजनों के लिए दुखी हैं और घायलों के साथ हैं। संत पापा उन लोगों के साथ हैं जो हिंसा के बीच भी हिम्मत के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। संत पापा लियो 14वें ने सभी को यूक्रेन में युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं सभी से यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि यह युद्ध खत्म हो जाए। आइए हम प्रभु से बातचीत के रास्ते खोलने, नफरत को खत्म करने और एक सही एवं स्थायी शांति को मुमकिन बनाने के लिए कहें। और संत पापा लियो 14वें ने बुधवारी आम दर्शन समारोह से पहले लैटिन अमेरिकी संगठनों, बाल संरक्षण में अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह संगठन गलत व्यवहार को रोकने और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। संत पापा ने कहा कि उन्हें अलग अलग लैटिन अमेरिकी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। संत पापा ने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि कलीसिया में सभी जगहें, चाहे वे प्रत्यक्ष हो या आभासी, सच में यीशु ख्रीस्त के साथ एक फायदेमंद मुलाकात की जगह बने जो डर, भय या संदेह से मुक्त हो। संत पापा ने उन्हें यह सोचने के लिए आमंत्रित किया कि कैसे पहले शिष्य, जब वे यीशु मसीह से मिले, वे मोहित हो गए थे। एक ऐसा पल जिसने उनकी जिंदगी को खास बनाया और उन्हें बदलने का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि उन्होंने बिना किसी झिझक के खुद को यीशु को समर्पित किया। संत पापा ने कहा कि वह अनुभव कोई पुरानी बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग फिर से जी उठे प्रभु से मिलने और प्रभु के साथ प्यार का सच्चा अनुभव करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन इस पाने के लिए, संत पापा लियो ने जोर देकर कहा, यह जरूरी है कि हमारे पास सुरक्षित जगहें हों। संत पापा ने कहा कि दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाता है और किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक और इंसानी विकास में रुकावट डालता है। संत पापा ने कहा कि प्रभु के चेतावनी पर ही केंद्र ने अपना मिशन शुरू किया। जब मसीह ने चेतावनी दी कि छोटों के लिए बदनामी का कारण न बने, संत पापा ने याद किया कि पिछले हफ्ते स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान उन्होंने धर्माध्यक्षों से
उन लोगों के दर्द के बारे में बात की थी जिन्हें उन लोगों ने चोट पहुंचाई है, जिन्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, और उन्हें ऐसी स्थितियां बताया जिनसे पहले कलीसिया समुदाय को सुनने, सच्चाई, न्याय, मुआवजे और रोकथाम एवं देखभाल की संस्कृति के लिए और ज्यादा पक्के इरादे के साथ जवाब देने के लिए कहा जाता है। उधर कास्टल गंडोल्पो में परमाध्यक्ष निवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए संत पापा लियो 14वें ने अमेरिका और ईरान के बीच हालिय समझौता ज्ञापन, स्पेन की अपनी हालिय प्रेरित यात्रा, प्रवास के विषय और SSPX के आसन धर्माध्यक्ष अभिषेक पर विचार किया। कास्टल गंडोल्पो में विल्ला बारबरेनी से बाहर खड़े होकर, जहां उन्होंने हमेशा की तरह अपना मंगलवार का दिन आराम करने और काम करने में बिताया था, संत पापा उन पत्रकारों से बात करने के लिए रुके। उन्होंने स्पैनिश मीडिया के उन लोगों के साथ अपनी बात शुरू की जो टेनेरिफ से वापसी उड़ान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण अनुत्तरित रह गए थे, जिसके कारण संत पापा लियो को एक अलग विमान से वापस लौटना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बारे में पूछे जाने पर संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर का शुक्र है, कम से कम यह ज्ञापन तो है, जिस पर वे शुक्रवार को आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। और संत पापा लियो 14वें ने इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा मनाए जाने वाले जीवन दिवस 2026 के लिए भेजे गए अपने संदेश में अपने बच्चों, खासकर छोटे बच्चे को खोने का दुख मना रहे माता पिताओं के लिए प्रार्थना और आध्यात्मिक निकटता प्रदान की। संत पापा का यह संदेश वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने 21 जून को होने वाले सालाना कार्यक्रम से पहले महाधर्माध्यक्ष जॉन शेरिंगटन को भेजा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्पेन की प्रेरितिक यात्रा पर संत पापा का संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग अपने स्पेन की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Priye bhaiyo evam behno, suprabhat aur su swagatam. Main aap sabhon ke sang pichle saptah Spain, Madrid, Barcelona, Montserrat aur Canary Dweep ki preritik yatra par अपने चिंतनों को साझा करना चाहूंगा। अफ्रीका के चार देशों की अपनी लंबी यात्रा के बाद इस समय मैंने एक यूरोपीय देश की एक प्राचीन और ख्रिस्तीय परंपरा की समृद्धि में अपने को सराबोर किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वर्तमान समय में स्पेन ने जो अपने में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। हर जगह संत पापा का आतिथ्य जोश और सुनने की उत्सुकता से किया। इसके लिए मैं ईश्वर और पूरे स्पानी लोगों, राजा और नागर अधिकारियों, धर्माधीशकों और कलिसियाई समुदायों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट करता हूँ। संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर के लोगों ने मुझे अपने विश्वास और प्रेम की आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा वृहद सांत्वना प्रदान किया। अपनी ओर से मैंने रोम के धर्माध्यक्ष स्वरूप विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए इस बात की सुनिश्चितता प्रदान की कि वे एकता को बढ़ावा देते हुए वार्ता और विभिन्नताओं में एकता के माध्यम से हर तरह के विभाजन और संघर्षों पर विजय प्राप्त करें। यह संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी की एक विशेष सेवा है, एक सेवा जो हर समय उन देशों के कलिसियाई और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने में एक विशेष अभिव्यक्ति को प्रकट करती है। स्पेन के संबंध में संत पापा ने कहा कि मैंने इस बात को देखा कि हर उम्र के कितने ही लोगों ने संत पापा की प्रेरितिक यात्रा का खुशी में इंतजार किया। हर जगह मैंने असंख्य लोगों की भीड़ देखी जिन्होंने बहुत ही गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया। हम इस सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं और यह हमारे लिए विचारणीय है। निसंदेह इस तरह की सहभागिता हमारे लिए सर्वप्रथम स्पानी लोगों के विश्वास को प्रकट करती है, संत पापा ने कहा। उन्होंने कहा कि वही मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह इस तथ्य को प्रकट करती है। मेरा मानना है कि यह एक सच्ची और गहरी

नींव पर एकता पाने की बड़ी जरूरत को दिखलाता है, जो ना तो सोच पर आधारित है और ना ही किसी खास फायदे पर ही। यह नींव आखिरकार हमें यीशु ख्रिस्त में प्राप्त होती है, जिसे हम सुसमाचार के जरूरी सांस्कृतिकरण के माध्यम लोगों के जीवन में प्रसारित कर सकते हैं। यह ऐसा कर सकता है क्योंकि इसका संदेश दोनों जरूरतों का प्रत्युत्तर देता है, एक सच्चाई की खोज और दूसरा न्याय की प्यास। मैड्रिड और बार्सिलोना में हमारी भेंट एक बड़े महागिरजाघर के साथ साथ एक आधुनिक स्टेडियम में हुई। हमने मोंसेरात के आबे में रोजरी प्रार्थना की। हमने सग्रादा फामिलिया में ख्रिस्तियाग अर्पित किया, जो एक शानदार निशानी पत्थरों और दीप का मधुर मिलन है, अपने में हर एक को ख्रिस्तीय रहस्य के बारे में कहता है। प्राचीन और आधुनिकता का यह मिलन, संत पापा ने कहा, ख्रिस्तीय परंपरा और समकालीन परंपरा ने मुझे यूरोप के असली रूप, उसकी बेशुमार दौलत को एक जीवित सच्चाई के तौर पर, ना कि पुरानी बातों के रूप में देखने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा, यह एक धरोहर है जिसकी हमें सावधानी पूर्वक सुरक्षा करने की जरूरत है, जिससे यह आज के वैश्विक दुनिया में महत्वपूर्ण चुनौतियों, शांति, समग्र पारिस्थित के समानांतर और सतत विकास तथा मानवीय सम्मान के आधार पर उपयोग में लाई जा सके। ये वे सारी चुनौतियां हैं जिन्हें वैटिकन द्वितीय महासभा ने पहले ही स्पष्ट रूप में चिन्हित किया था और जिसके संबंध में कलीसिया के धर्म सिद्धांत ने बाद में जिक्र किया, और वर्तमान में जिसकी चर्चा विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास करता है, जिसका लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा करना है। संत पापा लियो ने कहा कि विभिन्न मिलनों के द्वारा मैंने संत पापा के विचार अनुरूप आज की मानवता में सुसमाचार की आशा को सुनने की जरूरत को पाया, जो विकास के नकारात्मक रूपों द्वारा हो रहे बुरे नतीजों से बुरी तरह परेशान है। यह आवश्यकता जो विभिन्न साक्ष्यों में अभिव्यक्त हुई, जिसे मैंने सुना, कभी कभी प्रभावित करती तो कभी शिक्षा प्रदान करती है। इस जरूरत को मैंने छोटे और गरीबों के चेहरों में भी देखा जिनसे मेरी मुलाकात हुई। पल्ली का वह बालक जिसने अपनी चिट्ठी को मेरे लिए पढ़ा, कुछ दुराचार के शिकार जो अपने को सुने जाने की मांग करते हैं, कैद खाने की वे बंदी जिन्होंने मेरा इंतजार किया, युवा जो अपने को चिंतित और आशाओं से भरा पाते हैं, आतिथ्य केंद्र कनारी द्वीप के प्रवासी गण। संत पापा लियो ने कहा कि कनारी महाद्वीप हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था, जहां मुझे एक व्यापक जानकारी दी गई। मुझे द्वीप समूहों की एक ओर भौगोलिक जानकारी मिली तो दूसरी ओर स्थानीय कलीसिया के द्वारा इस सच्चाई से अवगत कराया गया, जो एक वृहद संख्या में बाध्य प्रवासियों का स्वागत करते हैं, जो मुख्यतः अफ्रीका से आते हैं। हम जानते हैं कि प्रवासन की घटनाएं अपने में जटिल हैं और उसके लिए संगठित और सहयोगिक कार्य परियोजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन यह परिभाषा हमारे लिए एक अलग विस्तृत दृष्टिकोण को खोलती है। यह हमें यह समझने के योग्य बनाती है कि कैसे हम आज की दुनिया में सुसमाचार का पुनः अध्ययन करने को बुलाए जाते हैं, एक दूसरे के संग किस तरह अपनी संस्कृति के उपहार को साझा करते हैं, और उन सारी चीजों में विशेषकर ख्रिस्त के कौन से संदेश फलहित होते हैं। बहुत से फलों में हम इसमें एक विशेष फल लोगों और देशों के बीच में वार्ता को पाते हैं, भ्रातृत्व की भावना में मिलन, जो हमें एक दूसरे के मूल्यों को पहचानने और उनकी प्रशंसा करने में मदद करता है। यह अपने में एक सहज मार्ग नहीं है, यह हमसे सद्भावना और ईश्वर से सहायता की मांग करती है, लेकिन यह हमारे लिए एक मार्ग है जो हमें प्रेम की सभ्यता के मार्ग में अग्रसर करता है। संत पापा लियो ने कहा कि मेरी प्रेरितिक यात्रा के आदर्श वाक्य अलजादा ला मीरादा, अपनी आंखों को उठाएं, था। यह
यीशु के शब्द हैं जिसे उन्होंने अपने प्रथम शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जिससे वे लोगों और भीड़ में जीवन, सच्चाई और पूर्णता की चाह को देखने के योग्य हो सकें। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन वचनों को मेरे लिए भी कहते हैं और उनकी कृपा से मैंने इस प्रेरितिक यात्रा में उसका अनुभव किया है। आज मैं आप सबों को निमंत्रण देना चाहूंगा कि हम अपनी आंखें उठाएं। हम यीशु से अपने पड़ोसी की ओर, लोगों और दुनिया की ओर देखना सीखें। यीशु की निगाहों से, अर्थात प्रेम, सम्मान और करुणा की भावना से। संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा के अंत में सबों के प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त किए जिन्होंने उनकी प्रेरितिक यात्रा की सफलता हेतु प्रार्थना की, विशेषकर स्पेन के मठवासी धर्म बहनों के लिए। उन्होंने कहा, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनकी संख्या बहुत है। संत पापा ने कहा कि आप निरंतर प्रार्थना करना जारी रखें, जिससे कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा वह बीज अत्यधिक फल उत्पन्न कर सके जिन्हें मैंने बोया है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार को अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो 14वें ने ईरान और अमेरिका से बातचीत और सहयोग के रास्ते पर चलने की अपील की। लगभग 4 महीने की लड़ाई के बाद दोनों देशों के शुक्रवार 19 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। संत पापा ने कहा, मैं इस्लामिक गणतंत्र ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते पर पहुंचने का खुशी के साथ स्वागत करता हूं, जिस पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किया जाएगा। यह सब्र और बातचीत के काम का एक हौसला बढ़ाने का नतीजा है। संत पापा ने उन मध्यस्थ देशों को धन्यवाद दिया जिन्होंने शांति बातचीत को आसान बनाने के लिए काम किया है। स्विस सरकार के मुताबिक यह समझौता बर्गेनस्टॉक के एक होटल में होगी। बर्गेनस्टॉक एक पहाड़ है जहां से लुसर्न झील दिखती है और जहां पहुंचना मुश्किल है। संत पापा ने इस समझौता ज्ञापन पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह समझौता मध्य पूर्व में आपसी भरोसे, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे लोगों के बीच बातचीत और सहयोग के रास्ते बढ़ेंगे। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले किए, जिसमें देश के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया गया। ईरान ने जवाब में इसराइल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी बेस और सहयोगियों पर जवाबी हमले किए, जबकि होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में रुकावट डाली। इसके बाद संत पापा लियो ने यूक्रेन में बढ़ती मौतों पर दुख जताया, क्योंकि रूस देश पर, खासकर यूक्रेनी शहरों पर अपने हमले तेज कर रहा है। संत पापा ने कहा, कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं और बचाने वाले भी मारे गए हैं। कलीसिया और सांस्कृतिक विरासत की जगहें आग की लपटों से तबाह हो गई हैं। मैं उन सभी के करीब हूं जो अपने प्रियजनों के लिए दुखी हैं और घायलों के साथ हैं। संत पापा उन लोगों के साथ हैं जो हिंसा के बीच भी हिम्मत के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। संत पापा लियो 14वें ने सभी को यूक्रेन में युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं सभी से यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि यह युद्ध खत्म हो जाए। आइए हम प्रभु से बातचीत के रास्ते खोलने, नफरत को खत्म करने और एक सही एवं स्थायी शांति को मुमकिन बनाने के लिए कहें। और संत पापा लियो 14वें ने बुधवारी आम दर्शन समारोह से पहले लैटिन अमेरिकी संगठनों, बाल संरक्षण में अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह संगठन गलत व्यवहार को रोकने और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। संत पापा ने कहा कि उन्हें अलग अलग लैटिन अमेरिकी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। संत पापा ने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि कलीसिया में सभी जगहें, चाहे वे प्रत्यक्ष हो या आभासी, सच में यीशु ख्रीस्त के साथ एक फायदेमंद मुलाकात की जगह बने, जो डर, भय या संदेह से मुक्त हो। संत पापा ने उन्हें यह सोचने के लिए आमंत्रित किया कि कैसे पहले शिष्य, जब वे यीशु मसीह से मिले, वे मोहित हो गए थे। एक ऐसा पल जिसने उनकी जिंदगी को खास बनाया और उन्हें बदलने का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि उन्होंने बिना किसी झिझक के खुद को यीशु को समर्पित किया। संत पापा ने कहा कि वह अनुभव कोई पुरानी बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग फिर से जी उठे प्रभु से मिलने और प्रभु के साथ प्यार का सच्चा अनुभव करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन इस पाने के लिए, संत पापा लियो ने जोर देकर कहा, यह जरूरी है कि हमारे पास सुरक्षित जगहें हों। संत पापा ने कहा कि दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाता है और किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक और इंसानी विकास में रुकावट डालता है। संत पापा ने कहा कि प्रभु के चेतावनी पर ही केंद्र ने अपना मिशन शुरू किया। जब मसीह ने चेतावनी दी कि छोटों के लिए बदनामी का कारण न बने, संत पापा ने याद किया कि पिछले हफ्ते स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान उन्होंने धर्माध्यक्षों से
उन लोगों के दर्द के बारे में बात की थी जिन्हें उन लोगों ने चोट पहुंचाई है, जिन्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, और उन्हें ऐसी स्थितियां बताया जिनसे पहले कलीसिया समुदाय को सुनने, सच्चाई, न्याय, मुआवजे और रोकथाम एवं देखभाल की संस्कृति के लिए और ज्यादा पक्के इरादे के साथ जवाब देने के लिए कहा जाता है। उधर कास्टेल गंडोल्फो में परमाध्यक्ष निवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए संत पापा लियो 14वें ने अमेरिका और ईरान के बीच हालिया समझौता ज्ञापन, स्पेन की अपनी हालिया प्रेरित यात्रा, प्रवास के विषय और SSPX के आसन धर्माध्यक्ष अभिषेक पर विचार किया। कास्टेल गंडोल्फो में विल्ला बारबरेनी से बाहर खड़े होकर, जहां उन्होंने हमेशा की तरह अपना मंगलवार का दिन आराम करने और काम करने में बिताया था, संत पापा उन पत्रकारों से बात करने के लिए रुके। उन्होंने स्पैनिश मीडिया के उन लोगों के साथ अपनी बात शुरू की जो टेनेरिफ से वापसी उड़ान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण अनुत्तरित रह गए थे, जिसके कारण संत पापा लियो को एक अलग विमान से वापस लौटना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बारे में पूछे जाने पर संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर का शुक्र है, कम से कम यह ज्ञापन तो है, जिस पर वे शुक्रवार को आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। और संत पापा लियो 14वें ने इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा मनाए जाने वाले जीवन दिवस 2026 के लिए भेजे गए अपने संदेश में अपने बच्चों, खासकर छोटे बच्चे को खोने का दुख मना रहे माता पिताओं के लिए प्रार्थना और आध्यात्मिक निकटता प्रदान की। संत पापा का यह संदेश वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने 21 जून को होने वाले सालाना कार्यक्रम से पहले महाधर्माध्यक्ष जॉन शेरिंगटन को भेजा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।